ये हिचलता फिजी रेडियो और मैं हूँ प्रोग्राम स्टार्टर अविनेश. हमेशा की तरह हम आपके लिए लाए हैं कुछ मस्त सॉन्ग्स, कुछ जानकारी और बहुत सारी बातें. दोस्तों साथियों, आपको स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के 740 एपिसोड में. मैं हूं प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश और आप हमें सुन रहे हो फ्रीक्वेंसी 96.9 एफएम और वी आर सिचुएटेड इन प्लेन्स मीडिया स्टूडियो इन मद्रास स्ट्रीट. जी हां, जिस तरह

0: एवरी वीक हम आ जाते हैं आपके साथ में. सरडे है, आशा है कि आप एंजॉय कर रहे हो. और हमेशा की तरह इस बार भी हमारे पास एक गेस्ट है जो जुड़ चुके हैं हमारे स्टूडियो में, ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, और वो है मोनिल जी, जिसको काफ़ी बार आपने अपने जलसा पे देखा होगा. और साथ साथ में अर्चना जी भी हमारे साथ में शामिल हो चुके हैं. और आज का जो विषय रहेगा जिस पर हम चर्चा करेंगे, वो फिजी गिरमिट कैंडरबरी जो दिवस मनाई जा रही है. दिस इज़ दी 147th गिरमिट जो रिमेम्बरेंस है, और ये जो क्राइस्टचर्च में मनाई जा रही है उसकी जो पूरी जानकारी इस एपिसोड में आज हम आपको सुनाने वाले हैं. और साथ साथ में आप जाइए नहीं, फ्रीक्वेंसी में रहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे आप बाद में हम एक जो हमने रिकॉर्डिंग की थी, इंटरव्यू ली थी अभी हाल ही में एमपी हेमेश खेम्बल, वो भी आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे. सो दैट यू कैन गेट मोर ऑफ योर कैंडिडेट्स, बिकॉज दिस इज ऑब्वियसली न्यूजीलैंड इलेक्शन ईयर. तो चलो हम आगे बढ़ते हैं. हमारे साथ शाहिल है जो पेनलिंग करेंगे, और शिवनील जी भी आ चुके हैं स्टूडियो में. ही इज गोइंग टू हेल्प अस विद वीडियोग्राफी. थैंक यू बोथ ऑफ यू. और साहिल के पास एक सॉन्ग भी है जो प्ले करेगा, एंड दिस इज द बेस्ट दैट ही कैन फाइंड, बिकॉज आज के एपिसोड में मोस्ट लाइकली एक ही सॉन्ग रहेगा. तो साहिल ने काफी परिश्रम किया है, और ही इज कमिंग अप विद द बेस्ट सॉन्ग एवर जो आप आज आप सुनोगे. और साथ साथ में साहिल इज ऑल्सो कम प्रिपेयर्ड विथ, जैसे हमेशा की तरह, खेल कूद की दुनिया के कुछ समाचार लेकर आ जाते हैं. इज प्रीटी एक्साइटेड, और वो चाहता है कि जल्द से जल्द ये जो एपिसोड आज खत्म हो ताकि वो घर पहुंच सके, क्योंकि उसको कुछ एक एक्चुअली गेम भी देखना है. तो बताइए साहिल,
1: एक्चुअली फाइनल है चीफ्स और हरिकंस के.
0: जी हाँ, सो आपने आपका जो $3,000 बेट करना था किस पे किया है?
1: अभी किसी पे नहीं किया है. बोथ टीम्स आर लुकिंग वेरी गुड, कोई भी जीत सकता है.
0: कुछ भी हो सकता
1: है. इस गेम में हरिकंस आर फेवरेट, थोड़ा समझे
0: फेवरेट इन चीफ्स मस्ट विन, क्योंकि दे हैव बीन मिसिंग
1: क्वाइट अ लॉट इन अ रो ना.
0: सो दिस टाइम दे आर देयर, एंड एक्चुअली चीफ्स आफ्टर बीटिंग क्रुसेडर्स आई थिंक उनका जो मोरल और बूस्ट हो चुका है. सो दे आर रियली देयर, विल सी व्हाट हैपेंस. और जस्ट क्विकली फीफा में भी आज क्या हो रहा है, क्या मालूम है कौन सा गेम कल सुबह देख सकते हैं?
1: काफी गेम हुए है, काफी गेम भी आज भी हुई. इट्स ऑल गोइंग गुड, टू मेनी टू लिस्ट.
0: Yeah.
1: I would say probably go online and have a look and actually
0: any
1: watch
0: team
1: the game.
0: आपका भी favorite है?
1: Actually, favorite teams are underdogs लोग हैं. Because they are actually performing very well.
0: Do you want to
1: well.
0: Become the octopus and predict?
1: नहीं. It's very hard to predict this one. Because जो an अच्छा team जो an favorites है, they are
0: upsets.
1: Losing or they are drawing and जो an team का चाहिए हार हो, they are winning.
0: Maybe it's warming up.
1: Could be.
0: कि second game भी इसी तरह जा रहा है.
1: Second game, maybe second round start हुआ, I think it started today.
0: But I think it's pretty good. We actually मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसे नाम सुन रहा हूँ जो मुझे पता ही नहीं था वो सब exist करते हैं, वो सब countries.
1: हाँ, new countries. And even इस बार FIFA में उन्होंने नया rules लाए, so which is pretty good and interesting to see. आज एक red card मिला, just for covering their face.
0: Okay.
1: हाँ.
0: तो शर्मा नहीं सकते.
1: Nah. Like literally you cannot cover your face in hats and t-shirts, especially when play stops.
0: Yeah, I mean the few things are happening. I think this time FIFA has actually done a few rules, काफी कुछ changes किया. But I think overall, अगर if I compare the last one to this one I find it more interesting. मुझे ऐसा लगता है कि it's going at a good pace. उस तरह breakdowns नहीं होता है.
1: Dear teams है और dear games है. हाँ, actually those rules were for that key fast game. Time wastage नहीं है उसका, so they have put penalties around those.
0: Yeah, which is good. I mean it's working. I think it is working. और मुझे अच्छा भी लग रहा है. Because otherwise, while I was watching, जो breakdowns होता था, जो बहुत delays होता था, interest मैं lose करता था. Whereas जो last जो women सुखा हुआ था, that was very interesting. मुझे वो काफी अच्छा लगा. Because that had less kind of stoppage time. But this time it is pretty good. So it's happening quite good. Or this time, of course, we have Mexico, Canada, and US.
1: US hosting it.
0: Hosting, so which is quite nice. तो कोई बात नहीं. इसके विषय में फिर हम आगे चल के बात करेंगे. But going back to today's topic, which is 147, जिसे मैंने बोला था गिरमिट रिमेम्बरेंस, जिसके विषय में हम बात करेंगे. और हमारे साथ शामिल हो चुके हैं मोनिल के प्रताप एंड अर्चना, जो इनकी पूरी जानकारी हमें देंगे. वी विल लेट साहिल प्ले हिज सॉन्ग, जैसे वो सॉन्ग खत्म होगा वी विल डिस्कस एंड गिव यू फुल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस जो दिवस या जो रिमेम्बरेंस नाइट हम कहेंगे मनाई जा रही है क्राइस्टचर्च में. और जो लोग हमें ज्यादा करके फेसबुक में देखते हैं, सो वी विल बी कमिंग ऑन लाइव एज वेल, ताकि आप हमें देख सको, मोनिल को देख सको एंड अर्चना एज वेल, व्हेन वी आर गोइंग टू शेयर the full information about this event that is coming up in July. Bahut dur nahi hai, I mean July to bas around the corner hai. It's happening on 4th of July at Templeton Community Center. Uske vishay mein bhi hum puri baat karenge. And of course, jo log Fiji se jude hue hain, Fiji se aaye honge, then Girmit, of course, is not

0: Nothing new. हम उसके विषय में काफी बार सुने हैं, but this time again we were just going to refresh what we know and then we were going to share more from Monil and Archana. तो Sahil, your song.
1: Google के अनुसार ये पता चला है कि 50 करोड़ की रकम एक चटनी की गोनियों में छुपाकर MG गाड़ी में रखी गई और मजे की

0: me estaba ahí.
1: Ryot Saba. Con Takura.
0: फिर मुड़ गया भाई उम्र भाएगा भाई अरे सरदार है वो रामगढ़ का हैंडल है ठाकुर
1: वो ठाकुर उसकी शादी है शादी कब है कब है शादी
0: सरदार इट इज टुमारो
2: चाहे ठाकुर की शादी हो या गब्बर की चाहे कुछ भी ओकेजन हो बाल तो कटाना है हैंडसम तो दिखना है तो सिर्फ एक नाम याद रहे अपुन का चॉइस नीर बाबा बोले तो एनजेड फ्लेम्स बाबा 190 वेरेकी रोड प्रिनवा स्टेज नो अपॉइंटमेंट्स नेसेसरी नीर बाबा इज एन एक्सपर्ट इन रेगुलर हेयर कट्स फ्लैट टॉप रेजर शेव स्किन फाइट सीजर कट्स रेजर कट्स चिल्ड्रन कट्स एंड बियर्ड ट्रिमिंग उसका नंबर है 0271-127-3687 या तो फिर 0397-431-71 सुअर के बच्चों नाम याद रहे एनजेड फ्लेम्स बाबा
3: Jalsa Fiji Radio, Jalsa Talent Series and Jalsa Business Series would like to express their gratitude to the following sponsors. Generation Homes, contact them for your building requirements. And Lifestyle Solutions, contact Richard Sevak if you need help with insurance. And contact Varun Jani of Next Step Accountants and Business Advisors for accounting needs. And contact Rohit Sajadeva of Better Choice Home Loans for your financing needs. And contact NZ Flames Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements. And contact T. Nandan of Govice Driving School if you need driving lessons. And contact Anshul Gupta of Client Real Estate who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city. And contact Danny from On The Go Eastgate for all mechanical requirements.
4: जी हाँ दोस्तों साथियों आपको पुनः स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के सेल लाइफ एपिसोड में मैं हूँ प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश और जैसे मैंने पहले बोला था हमारे साथ में साहिल जी

0: जो हेल्प कर रहे हैं विद्या पैनलिंग एंड साथ साथ में शिव नील बिहाइंड द कैमरा. अगर हम आप जुड़ रहे हो हमारे साथ है फेसबुक लाइव पे तो आपको भी स्वागत करेंगे. और हमने जिसे शुरू में मेंशन किया था हमारे जो गेस्ट से आज के लिए मोनिल प्रताप और अर्चना जी दोनों हमारे स्टूडियो में शामिल हो चुके हैं. और जैसे हमने बोला था आज हमारा जो चर्चा है गिरमिट जिसे आप पोस्टर में देख सकते हो द पोस्टर इज हियर व्हिच इज द गिरमिट नाइट हम कहेंगे होने जा रहा है क्राइस्टचर्च में जिसकी फुल इन्फॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय मोनिल एंड अर्चना ड्यूरिंग दिस वीडियो इंटरव्यू. तो चलो मोनिल जी और अर्चना थैंक यू फॉर कमिंग टू द स्टूडियो. एंड अर्चना जी आप बताइए कि आज आपका दिन कैसा बीता.
1: आज तो बहुत गर्मी थी यहाँ पर 21 डिग्रीज और हवा ऐसी चल रही है सब कुछ उड़ रहा है
0: जी.
1: तो बिजी बीता.
0: जो लोग शायद हमसे फिजी से सुनेंगे उनको बोल रहे हैं 21 डिग्रीज और काफी गर्मी है.
1: बहुत गर्मी थी पिछले कुछ दिन से फ्रॉस्ट हो रही थी तो अचानक से जब 21 डिग्री
0: हमारे लिए गर्मी है.
1: यस
0: जी हाँ डेफिनेटली. मोनिल जी बताइए यू आर नॉर्मली काफी आप व्यस्त रहते हो काफी बिजी रहते हो तो आज आपने कुछ टाइम ऑफ लिया कि आज भी आपका दौड़ भाग चल रहा था.
2: मेरा भी तो भाग First of all, namaste. Sabke, and thank you, Jalsa Ji, or Jalsa Fiji Radio, for having us. We're very excited to be here, and it's a privilege to be on your show. Aaj ke din bahut busy tha. Saturday ya Sunday ke mera shopping hota hai Pack and Save mein. To mera aur mera wife kiya tha Pack and Save, aur ek aadha order karke kaam kiya.
0: Mm-hmm. But you can also, there are other shops as well. Aap wahan bhi ja sakte ho.
2: Hai to.
0: But anyways, that's good on you. To chalo hum chalte hain directly on this jo event aa raha hai, Gyrmit Remembrance Night, uske vishay mein baat karenge. Kyunki hamare paas bahut samay to nahi rahega. We have a recording to play, jise humne mention kiya tha frequency mein, which is an interview we had with MP Hamish Campbell, jo Alam ka jo constituency ka MP hai. So we will try to play that after our video interview with Monil and Archana. So going on to this event, so Archana ji, aap bataiye when, where, kahan pe ho raha hai aur kab shuru ho raha hai program aur kab khatam hoga?
1: To ye ho raha hai shanivar 4th July sham ko 7 baje Rolleston Community Center par. Puri family ke liye. Templeton Community Center. Aur it's for the whole family. Bacche ho, ghar ke bade ho ya buzurg ho, sab ke liye hai. Hamare purvajon ke bare mein kahaniyan hogi. बहुत सारे परफॉर्मेंसेस है स्पीचेस है अवार्ड्स है क्विजेस है उसके बाद अवार्ड्स है गिव अवेज है तो पूरी फैमिली के लिए है.
0: Yeah, and I understand this event जो भी हो रहा है it has happened before ना आप लोगों ने पहले भी ऑर्गेनाइज किया था.
2: हम लोग अबाउट 4 ईयर से करता है हम लेकिन इस साल के इवेंट कुछ खास डिफरेंस है हम लोग के एक आध हम लोग नया प्रोग्राम करता है नया परफॉर्मेंसेस है और एक सरप्राइज भी है सबके लिए तो वो चीज़ हम लोग का नया है इस साल के लिए.
0: ऐसे और जब गिरमिट के बात किया जाए मोनिल इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली यू आर न्यूजीलैंड बोर्न.
2: हम न्यूजीलैंड बोर्न है न्यूजीलैंड बोर्न है सर ये वेलिंगटन बोर्न सर या टू सपोर्ट द हरिकेन समटाइम्स
0: लेकिन समटाइम्स नॉट टुनाइट
2: नॉट आई टुनाइट आई विल
0: ओके
3: न्यूज देखे ना पे बैठी से तब सपोर्ट करें ना बने किस कह रहा दिल से हरिकेन्स का सपोर्ट करें बट रोक जगह पे बैठी से
0: अदरवाइज हमारे साथ में रहता है ही जस्ट कीप्स ऑन सेइंग गो क्रुसेडर्स.
2: Crash is the home. Crash is my forever home. But Gyrmit aaye to you know we are holding this event as a remembrance event. To hum mangta hai hum log sab ke invite karta hai Kelly Fiji Indians ke lekin sab ko inke pura you know Christchurch ke pura Canterbury ke aaye aur hum log ke sange ye remembrance event ke saath diye. You know kafi din ho gaya 147 years ho gaya hai since Gyrmit happened back in 1879. So it's a long time ago but we as our people we should appreciate the sacrifices and the hardship that our people went through back then aur hum abhi hali hum apne jaan paya ki hum log kahan se aaya hai ab bola tha bhi ki hum yahan paida hua hai aur hum sab ne bola tha tum kahan se hum log ki hum the isliye ki my parents Fiji ke aur people bola tha humne janta ki Fiji mein Indians hai so lekin ab hum log sakta hai jaane aur hum sakta hai samjhe ki kaise indian nine or fiji mein na so 60,000 people aina boat long mein from about 1879 to about from about you know 40 years from there and 87 ships there so you know a lot of people came there and many of them were told ki acha tumhe life mili aur acha life mili wahan se and they came there and they worked as laborers and and I worked in sugarcane fields and other jobs there. So, Ulunke Garden say, Hamlaki Fiji hai, jaise abhi hai.

0: Hey, or and then we look. That's why we're holding this remembrance event. Ki hum log sangya ye, aur hum log yaad kari ye log ke.
1: Jee, aur Rishan ji, aap bataye ki when we talk about Girmit, obviously it's kind of hamara jo we start thinking of those time how they would have struggled, jo bhi kuch struggle hua. How do you relate to yourself? Like, do you have like any family members? Because I understand you were born in Fiji.
2: I was born
1: so
2: in
1: obviously
2: Fiji.
1: You would have heard stories in your school days, or maybe relatives ya kisi ne kuch share kiya hoga.
2: Yes, so Fiji mein maine bahut sari kahaniyan suni. Mere mummy ke आजा बोलते हैं तो आजा थे जो गिरमिट के समय आए थे और मेरे पापा की फैमिली को फिजी में रहे. आई थिंक मैं 8th जनरेशन हूँ तो हमने टिकट समय मिली जो इंडिया से आए थे लेकिन हमें पता नहीं है कि हम कहाँ से
1: exactly,
2: हुए
1: yeah.
2: हाँ तो फिर हम है इंडिया के ये पता है लेकिन कहाँ से है और कितने दिनों से फिजी में रह रहे ये अभी तक पता ही नहीं चला. तो ये अपनी कहानी है कि हम बोलते हैं हम इंडियंस हैं लेकिन एग्जैक्टली कहाँ से किसी को पता ही नहीं है. बहुत कम लोगों को पता होता है कि हम कहाँ कहाँ से आए.
1: जी हाँ, और वी वर टॉकिंग टू माय वन ऑफ माय फ्रेंड्स फ्रॉम इंडिया, अनूप जी. उसको भी हम याद करना चाहेंगे इस शो में, बिकॉज वी हैड टू इंटरव्यूज विद हिम अबाउट ग्रिमिट डे. नॉर्मली हम फिजी लोगों से बात करते हैं, बट देट वॉज क्वाइट डिफरेंट. एंड ही गेव अ स्टोरी फ्रॉम इंडियन, लाइक इंडिया के पर्सपेक्टिव से उन्होंने उस स्टोरी से लिया. और ही एक्चुअली वेंट बैक टू हिज विलेज एंड ही ट्राइड टू फिगर आउट, और उसने जाकर एक्चुअली ढूंढा भी कहाँ पे सब रिकॉर्ड्स वगैरह रखा हुआ है. सो इफ़ यू वांट इट इज ऑन आवर जलसा फिजी रेडियो यूट्यूब में आपको मिलेगा. एंड देन देयर इज काइंड ऑफ टू वीडियोज है, अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑलवेज हियर. बट दोज आर द स्टोरीज जो आई एम गेसिंग दिस इज काइंड ऑफ टॉक जो आप सुनोगे ऑन दैट गिरमिट रिमेम्बरेंस नाइट. हमें सुनने को मिलेगा बिकॉज आई एम गेसिंग देयर बी अ फ्यू पीपल जो शेयर करेंगे अपनी स्टोरीज हमारे साथ में. एंड जैसे मोनल ने शुरू में मेंशन किया है, अर्चना ने, कि देयर इज गोइंग टू बी सम परफॉर्मेंसेज एज वेल एंड अदर थिंग्स happening on the night. Or this starts from 7 p.m. so I'm guessing it might be like 3 hours or 4 hours ka rahega.
2: 2 ghante ka program hai aur fir hum sab ke liye socializing gana gaane wale log hai to hame entertainment hoti rahegi. Meri favorite hai exhibition rahegi jisme logo ko jaake opportunity rahegi dekhne ke liye ki kya use kiya ja raha tha us dinon mein. तो ये हमारी पहली बार है जो हम यू नो आर्टिफैक्ट डिस्प्ले करेंगे लेकिन होपफुली इसके बाद आज के बाद लोगों को पता रहे कि ऐसा होने वाला है. और अगर किसी के पास कुछ ऐसा हो जो वो शेयर करना चाहते हैं हम उस रात को डिस्प्ले कर सकते हैं. तो इस डिस्प्ले को एग्जीबिशन को देखने में समय लग सकता है.
1: जी हाँ, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स शायद गिरमिट डेज में लोग इस्तेमाल करे होंगे.
2: यस,
1: मे बी जो बड़ा वाला प्याला होता है चाय पीने वाला.
2: हाँ, अभी तक मिला नहीं है, अगर आपके पास हो तो जरूर बताना.
1: सर आते हैं यू हैव अ बिग प्याला
2: नंगोला वाला.
1: अभी नहीं, कोई जगह फोड़ दिया.
3: I don't know what happened. Fiji pe definitely raha, jo bada la chini raha bole jana. Wo raha. Yahan pe I don't think yahan pe raha.
1: Because I know meri aaji ke paas tha and she was the only one jo bada wala piya la is tarike. Whereas we were kind of waqt ke saath mein maybe we started minimizing. Jaise abhi agar ghar lete ho na to size reduce ho raha hai, compact ho raha hai. To maybe hamara jo piya la ke size pe reduce hote chala gaya. But jo purane log the ya hamare buzurg the, they kept using their big piya la. So that's how I remember jo bada piya la मैंने उसके ही साथ में देखा था. बट देन ऑफ कोर्स एज वी ग्रू अप देन वी हैड मोर एंड मोर स्टोरीज, तब पता चल रहा है कि देयर आर मेनी थिंग्स. शायद हमने उतना ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया, बट नाउ वी डू थिंक अबाउट दैट. फ्लैशबैक होता है व्हेन वी थिंक कि अगर हमें पता होता देन ऑब्वियसली वी वुड हैव ट्राई टू प्रिजर्व दोस थिंग्स. हमने शायद उतना ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं दिया. एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग जब हम मॉडल से की बात सुनते हैं कि ही दो ही इज बोर्न इन हियर बट ही इज नाउ getting that interest. So I think that could be one of the other motives ki jo log abhi bacche abhi ke bacche hain then they might get a bit motivated. Yeah, they will like history is there, like aisa nahi ki sirf Fiji history ki koi bhi history aap le lo, we do get excited when we talk about history. And this is a good way of actually telling the stories and wo jo flashback hota hai, and so that people can relate ki how it all happened in those days. And Asana ji, you were wanting to add something else.
2: मैं तो बस बोल रही थी ये जो चीज़ें हैं इसमें बस हमारी बस चीजें नहीं है इसमें इतिहास है इसमें हमारी बहुत सारी कहानियां है बहुत सारी यादें है बहुत सारी दर्द भी इसमें जुड़ा हुआ है तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि लोग अगर किसी के पास कुछ हो तो वो क्या-क्या हम डिस्प्ले कर सकते हैं अभी मुनिल ने सिक्योर किया है एक पुरानी सिंगा वाली सिविंग मशीन सो मुनिल ने मुझे फोटो जब भेजा तो मैंने मेरी मम्मी को भेजा और मेरी मम्मी के फेस पे उदासी टाइप छा गई कि अरे ये मेरे मम्मी

0: के पास हुआ करता था फिर खराब हो गया तो ऐसे ऐसी चीजें आके आप डिस्कस कर सकते हैं अपने बच्चों को दिखा सकते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे एंसेस्टर्स यूज करते थे और ये कुछ चीजें ऐसी है जो वो लोग इंडिया से लेकर आए थे फिजी क्योंकि ये फिजी में तो ओरिजिन नहीं है इंडिया से आई और अभी तक संभाल के रखा गया है
1: हमारे घर पे था एक सिंगा मशीन काफी हेवी होता है और देयर इज नो लाइक इलेक्ट्रिकल मोटर नहीं है
2: वो आपको जो बोर्ड चलाओ
1: या पैर से पेडल करना पड़ता है
2: अभी भी रखा रहेगा
1: अभी है
2: अभी भी है
1: बट इज इट वर्किंग लाइक डू पीपल यूज
2: नहीं probably jab hum Fiji mera last time wait time se dekha raha use hota
1: because
2: I mean it would still work but season gave it utna din se use nahi pe
1: they just need someone who's good at maintaining it.
3: तो आज क्वाल लकी टू फाइंड दिस वन तो आइए देखिए हम जो नाम हम तरह फोटो दिखा लेकिन फोटो नहीं दिखाएगा आइए इवेंट में देखिए और एक आधर हम लोग चीजें हम लोग सिक्योर करा है दिखा के लिए तो और कोई पास है कुछ रखे के जो उठा हम यूज होता या हम यूज करता या वैसे चीज है कुछ आइडियाज होगा प्लीज हम लोग कॉन्टेक्ट करिए हम लोग डिटेल्स देंगे जैसा जी लोग के और प्लीज हम लोग कॉन्टेक्ट करिए और हम लोग रिप्लाई करें
1: काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज नॉर्मली हम क्या करते हैं आते हैं शो देखते हैं एंड वी हियर स्टोरीज एंड परफॉर्मेंसेस एंड ऑफ कोर्स बिफोर आई से व्हाट मेरे दिमाग में था व्हाट अबाउट फूड बिकॉज पीपल विल गेट हंग्री
3: फूड
0: आप खिला रहे हैं ना सबको
1: हमें खिला रहे
3: खाना है हम लोग वी हैव फ्री फूड एंड फ्री ड्रिंक्स सात्विक टू वेजिटेरियन टू मीट है तो खाना रहेगा फूड रहेगा ड्रिंक्स रहेगा और फ्री कावा भी रहेगा तो सब सब चीज फ्री है फ्री इवेंट भी है कोई कॉस्ट नहीं है कोई चीज के सो आइए टेक पार्ट इन द रिमेंबरेंस इवेंट और सीखिए थोड़ा गिरमित के बारे में और अपन बच्चों के लेके आइए और इन्वॉल्व करिए एंड सो वी कैन पास ऑन द इंफॉर्मेशन एंड the you know the history that we have and our free khana bhi hai so everyone is welcome not just Fiji Indians welcome hey the whole community is welcome come and see what our history is aur hum log kahan se aaye hain
1: जी हाँ बिल्कुल सो फिर से याद दिला दे आपको हम बात करें 147 तक गिरमिटे रिमेम्बरेंस नाइट हम बोलेंगे विच इज हैपनिंग एट टिम्बरटन कम्युनिटी सेंटर 64 के करो टिम्बरटन जो होल है तो काफी पॉपुलर हो चुका है काफी इवेंट्स वहाँ हो रहा है एंड विच इज क्वाइट सेंट्रल एज वेल इफ यू आर लिविंग इन क्राइस्टचर्च रोल्स्टन हिल्सवेल लिंकन इट्स अ वेरी काइंड ऑफ सेंट्रल सो यू कैन जस्ट कम ओवर एंड be part of this program because I'm just guessing there'll be exhibitions rega that means you would get time to move around talk to other people socialize and ajisan chana ne mention kiya there'll be some music to keep you entertained lekin I think the idea behind this gaming day is just to tell the stories aur ye jo hamara jo history hai hum use rich history kahenge because we all know how it all happened I think ab to kafi is pe charcha ho chuki hai na I'm sure many of you would be aware how it all happened jise I'm only trying to explain 1879 when it all started usse pehle slavery chal raha tha which got abolished and then obviously they had to come up with some other bright idea ki how do we replace slavery
2: with legally
1: slavery but with legally so they came with this idea of indentured laborers in a legal way but end of the day it was a labor exploitation and that's when it had to end but एंड होते होते काफी समय लगा लेकिन इन बिटवीन जो कुछ होना था वो हो चुका था आवर फादर्स इंसेस्टर्स वेर एक्सप्लॉइटेड दे वेंट थ्रू लॉट ऑफ काइंड ऑफ हम कहेंगे काफी हार्श कंडीशंस में उन्हें काम करना पड़ा काफी ज्यादा और जिस तरह वो आए भी it was quite kind of tragic agar aap sunoge padhoge then you will feel aapko pain zarur aap feel karoge lekin ye sab jab bhi kuch hota hai jise hamare jo life hoti hai it is mixed with happiness and sadness hamare sath bhi hote rehta hai tab if you feel upar jayega hum kafi no nirasha ho jate hain and then feel comes down and you say oh yeah happy or economy achhi chal rahi so it always happens sabhi ke life mein hota hai so the thing with Gerimit is obviously we know the story it's kind of a very sad story kafi struggle tha lekin on the other side aap kya kuch seekh sakte ho and that is the other thing that you can learn on that night ek cheez main bolunga ki the way they traveled in the boat jis tarah boat mein sabhi log baithe aur aaye many things washed away जैसे अगर फिजी में आप किसी से बात करोगे दे डोंट नो कास्ट सिस्टम किया है लाइक